0: قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के हां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्त और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रस्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं, और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है।
0: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300420472
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9

ऐसे लोगों के साथ क्या होगा जन्नत में जाके, वो नजाना माफी सुदूर हिम मिन गिल्लिन, हम निकाल लेंगे, नजा का मतलब होता है निकाल लेना, खींच लेना, हम निकाल लेंगे क्या, माफी सुदूर हिम जो उनके दिलों में होगा, मिन गिल्लिन हसद कीना बुग्स, तजरी मिन तहत हिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी जन्नत में कोई बुग्ज रखने वाला शख्स दाखिल ना होगा, कोई हासिद कोई कीना परवर, उसका वहां ठिकाना ही कोई नहीं। अगर कोशिश के बावजूद दिलों में कुछ रह गया, देखिए कोशिश तो इंसान करता है लेकिन इसके बावजूद बसा औकात कुछ चीजें निकालना मुश्किल हो जाती, इंसान भूल जाता है लेकिन एट टाइम्स फिर ताजा हो जाती। तो ऐसी सूरत में दोनों लोग बहुत ही नेक हैं, बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन आपस में हर वक्त क्लैश रहता है। मसलन हजरत जैद जिन्हें आपने अपना बेटा तक कहा, हजरत जैनब जो बाद में आपकी बीवी बनी, वो भी जाहिर है कि उनको इतना बड़ा मकाम इसीलिए मिला कि वो बहुत नेक औरत थी। कोई बुरी औरत तो हुजूर की अहलिया नहीं बन सकती, और इसी वजह से दोनों के दरमियान आपने एक रिश्ता कायम किया, मगर नहीं बन सकी। क्योंकि बाज़ूकात दो इंसान अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका आपस में नहीं गुजारा होता, आदात के इख्तिलाफ की वजह से, मिजाज के इख्तिलाफ की वजह से, एक नेचुरल सी बात होती। आम लोगों में अगर कोई ऐसी कैफियत हो तो इंसान अवॉइड कर ले, उन लोगों के पास ज्यादा उठे बैठे नहीं जिनके साथ बैठते ही क्लैश शुरू हो जाए। लेकिन जहां रिश्ते होते हैं वहां पर तो ये नहीं कर सकते, शौहर और बीवी किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। तो बिलाखिर उनके दरमियान तलाक हो गई। अब यह है कि जहां तलाक होती है वहां कुछ बैड फीलिंग्स भी रह ही जाती हैं कोशिश के बावजूद। अब अगर दोनों ही जन्नत में जा रहे हैं अपने अपने नेक आमाल की वजह से, तो वहां जाकर ये देखते ही कि फलां भी जन्नत में पहुंच गया और इंसान कुड़ना शुरू करते, तो फिर जन्नत का मजा खराब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, कि वहां सबके दिल साफ होंगे। दुनिया भी जन्नत बन जाती है अगर दिलों को साफ कर लिया जाए। और इसी तरह जन्नत में जब ऊंचे नीचे दर्जे होंगे तो उसमें भी एक दूसरे के लिए हसद ना होगा। वहां जाने से पहले ही अल्लाह ताला दिलों को धो डालेंगे, पाक कर देंगे, जो कोशिश के बावजूद अगर कुछ कमी बेशी रह गई। हदीस में आता है कि अहले ईमान जब गम से निजात पा जाएंगे कि दोजख में न भेजे जाएं, तो जन्नत और दोजख के दरमियान एक पुल के ऊपर उन्हें रोक लिया जाएगा, और उनके आपस में अगर किसी से किसी को रंजिश थी या किसी पर किसी का हक था तो यहां पहुंचकर एक दूसरे से इंतकाम लेकर मामलात साफ कर लेंगे। जब उनके हिसाब हो जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए जन्नत है, तो जन्नत के अंदर एंटर होने से पहले बाहर रोके जाएंगे, यहां आपस में एक दूसरे से जो बदला लेना ले लो, जो किसी ने किसी को कहना कह लो, जो करना कर लो, अंदर जाके नहीं कुछ करना। अब वो आपस में एक दूसरे से जिसने जो इंतकाम लेना होगा, वरना वहां इंतकाम लेने की किसको पड़ी होगी, कहेंगे माफ किया, जन्नत मिल गई और क्या चाहिए। तो हो सकता है उस खुशी में ही एक दूसरे को माफ करके भाई भाई बन के अंदर दाखिल होंगे। और यही इस आयत की तफसीर की गई है। तफसीर मजहरी में आता है कि ये पुल बजाहिर पुल सरात का आखिरी हिस्सा होगा, यानी पुल सरात ही होगा एक तरह से, जो जन्नत के साथ लगा हुआ होगा। और बाज रवायात में यह भी आता है कि यहां पर जो अदायगी होगी वो आमाल से होगी, कि जो बदला लेना चाहेगा वो दूसरे का अमल ले लेगा वहां। मसलन एक शख्स को ऊपर वाले दर्जे में जाना था लेकिन किसी के साथ उसने ज्यादती की होगी, और वो शख्स अपना बदला लेना चाहता, वो जन्नत में पहुंचने से पहले उसे कहेगा कि वो लाओ हिसाब चुकाओ, अब वो ले लेगा। अब वो जिसने बहुत ऊंचा जाना था वो जरा नीचे आ जाएगा, और ये जिसका जरा कम था ये उसके अमल की वजह से वहां ऊपर चला जाएगा। गिल किसको कहते हैं? गिल क्या होता है? हसद। मुझे यूं महसूस होता है कि बहुत सारी खराबियों की बुनियाद जो है वो यही गिल और हसद है, जो बसा औकात बड़े दीनदार लोगों में भी सरायत कर जाती है। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन साथ इसका शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह से अपनी सारी नेकियां बर्बाद करवा बैठते हैं। क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो ही अंदर दाखिल हुई
उसने

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0300-196-8151।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो ऐलान। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदे ई आप नए फुर्म सभिनी लाइ खोली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ायत बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त ॻाल्हियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मंतज़र आहियूं। आबनाए हुरमज़ खुलण बाद जे 7 मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो बि कम शुरू कयो वेंदो। ओबामा जे मुआहिदो जहिड़ो नाहे, ईरान खे मुआहिदे एवज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी।

ईरानी फौज अमरीकी सदर ट्रंप जे अज अमन मुआहदे ते साइन वारे दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासां इनकलाब फौज जो चवण आहे त ईरानी मुज़ाकरात कार जो अचण ॾियारे कंहिंजी बि मुआहदे ते साइन न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करण चाहे थो। ट्रंप हुन मौके ते अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमरीका अमन मुआहिदो फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त ईरान अमरीका अमन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे लाइ अॻे खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में अमन मुआहिदे ते डिजिटल सहण लाइ तयारियूं करे पियो, पर पूरो यकीन आहे त अमन मुआहिदे खिते में चटादार अमन जो बुनियादु विझंदो। वज़ीर आज़म ट्वीट अमरीकी सदर ट्रंप रीट्वीट करे छॾियो।

0: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जनाद नमाज ए अलविदाई तकरीबन इजतमा जो शेड्यूल जारी। ईरानी मीडिया मूजिब आयतुल्लाह खमनाई जनाद नमाज की अलविदाई तकरीबन 4-5 जुलाई तेहरान में मुनक्द थन्दियूं। जनाजे की तकरीब 6-7 जुलाई तेहरान ए कुम में थन्दी। शहीद आयतुल्लाह खमनाई के 9 जुलाई से मशहद में इमाम रजा के मज़ार में तदफीन कई वी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हानी अवाजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-0003-8555-69।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फ्रेश
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

असांखे इस्तेमालु कयो मां जंहिंमहिल उहा चीज़ तव्हां क्रीम हणंदा खोड़ सारा माण्हू जेके मूंखे चवंदा आहिनि त भाजी असां क्रीमूं कोन हणंदा आहियूं ॻाल्हि थी सिधी त वधीक तव्हां साबुण ई तव्हां फेस वॉश लॻाए साबुण ई फेस इस्तेमालु कंदा बेसिक नीड आहे तव्हां साबुण एनी हाउ तव्हांजी ज़रूरत जेको आहे न ज़रूरत हूंदी आहे बाबा पंहिंजी तव्हां केयर कंदा ॾाढी ज़रूरत तव्हां प्योरी सोप सां जेको वाइटमिन सी सां काजो मिल असां तयारु ही सभु चीज़ूं ख़ूबसूरती खे वधाईंदियूं ऐं हाणे असां ॻाल्हि कयूं अगरि डॉक्टर पिंपल एच हूंदा आहिनि एकनी आहिनि एकनी जी वजह सां तव्हां अगरि परेशान आहियो थियण जी का बि मार्केट में एक्नी ट्यूब आयो आहे जेको आयो आहे ऐं जेको तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे सिर्फ़ एक्नी न बल्कि तव्हांजे चेहरे ते अगरि निशानात आहिनि तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे कोई अहिड़ो निशान आहे जेको सदियुनि खां वठी हले डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे हिकिड़ो वाहिद ट्यूब आहे जेको नस खे जेको आहे क्लियर बणाए स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदो आहे ऐं तॾहिं जो मर्द माई हुन खां अलावा वाइट एस जो लवली ट्यूब आहे क्रीम आहे हीअ रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई या वाइटमिन डी आहे ऐं गॾोगॾु सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि जेको आहे न फेयरनेस क्रीम आहे फेयरनेस क्रीम उहे माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि यानी कि हिन में फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त नाइट क्रीम तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा आहियो हिन में थोरो एज लिमिट बि हूंदो आहे तव्हां क्रीम जी अगरि हिनखे बाबा ॿार बच्चा के कुरा तव्हांजे मेकअप कंदो अगरि ग्लो चाहियो था या अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा गर्मी जे मौसम लॻाईंदो अगरि तव्हां काॾे जॉब कयो था काॾे वञो था कोई कमकार आहे करे पोइ तव्हां ॿाहिरि निकिरो एॾो इहो पवंदो ईंदी तव्हांजे अंदरि सन्स पवंदा आहिनि जेके ख़ूबसूरती तव्हां सां ऐं तव्हांखे मिले ऐं उहा ख़ूबसूरती मिले जेका तव्हां हमेशह हासिल तव्हां हर जॻह वञो बसि भॼंदा वठी मोटी अचो ओके सो ही ॻाल्हि हुई प्रोडक्ट जी मूं अमा खां पुछो आहे त तव्हांखे हुन में मतिलबु ई केरु आहे यानी कि वो कौन है जे हर के लोग कहते हैं भाई जमाना मतलबी है निशानियां है कि हम इंसान मतलबी है आसान पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए मैं सुन रही हूं मैंने आपको बोला था कि खुदा मोहब्बत का गाना चलाइए बिल्कुल मुझे आज याद है आपके लिए गाना लगा अब्दुल गफूर केसर अब्दुल गफूर केसर आपको खुशामदीद कहते हैं मौजूदी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून अशफाक कहते हैं वही भी डी हुआ जैसे गुजरी वया हां जाहिर सी गल है आबिद क्या लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा सो आबिद आपको वेलकम जमान भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम मोहम्मद जमान भाई कहते हैं वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी सारी लिखते हैं संडे के दिन भी आ गई आप नींद चोरी हो करें कुड़िए सतकर जुमा नहीं आती पर संडे वाले दिन तो मैं आपको गोली मारो एंजॉय करती आओ शोर भाई आ खुश आयो हैप्पी संडे वेलकम प्यारे भाई जी कैसे बताएं कैसे हैं किशोर हम सब मतलबी हैं मुश्किल टॉपिक फरमाइश है सॉन्ग सुना

मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर करिए. और सासा सैयद फारूक कहते हैं जो क्लोज होते हैं वो मतलब ही होते हैं. अच्छा ये नई बात पता चली हमें. और एहसन अरबाड़ी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम एहसन, शाला ताने खुश आयो. नाजिक अली हमारे साथ है वीआईपी शो, थैंक यू नाजिक भाई. और ये ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर जो सेल्फिश है वो ही मतलबी है. अना परस्त और खुद परस्ती मतलबी. केतरो समझा थो बार थी. अच्छा मुखे समझायो था सही सही. महानी बनी थी वही आया. इकबाल लाशरी हमारे साथ मौजूद है. हेलो इकबाल भाई कैसे. अच्छा उबैद कहते हैं आई पर असा किथे न किथे अभी हो जाओ. ओ कमजगा होती है आप पर आया.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
1: चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: डी

आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइए। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं तो इतना मत सोचिए जनाब, इस्तेमाल करिए। और अगर आप अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज कीजिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को पहले मैंने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इतनी सी बात है जो कि आप लोगों ने जाननी है कि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है और विटामिन ई बीड्स के साथ तैयार किया गया है। माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है इसके अंदर जनाब। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे परफेक्ट प्रोडक्ट आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकता। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, तो उसके अंदर ये चीज आप देखा करें कि वो प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो ऑल स्किन टाइप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हुई, नॉर्मल हुई, कॉम्बिनेशन टाइप हुई या किसी भी तरह की आपकी स्किन हो तो उसके ऊपर आप इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। तो जल्दी जल्दी से आप सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो नंबर आपको पहले से बता चुकी हूँ जिसके ऊपर आप रापता करके जो है ना इजीली अपने एरिया में अवेलेबल करा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जनाब ये आप लोगों की जिल्द को जो है ना खूबसूरत बनाती है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करती है और जनाब इस तरीके से इसे तैयार किया गया है कि एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो आपकी जिल्द की जो नमी है ना वो आपकी जिल्द की नमी को फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखती है। उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द जो है वो उसके अंदर अगर बेरोनकी आ चुकी है या फिर आपकी स्किन जो है वो काफी डल हो चुकी है तो आपकी स्किन जो है वो तरोताजा हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक मजे की बात है कि जब आप सिर्फ दो रातें इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो दो रातें आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, फिर आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आपकी जल्द जो है वो चमकदार हो जाएगी, आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हों वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर एक्ने का प्रॉब्लम हो वो खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन की जो है ना वो केयर करती रहेगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे आप किस तरीके कार को फॉलो करके, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, ये एक नाइट क्रीम है तो जाहिर सी बात है रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो जनाब डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन पर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपके चेहरे की स्किन रूखी सूखी लग रही होती है तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी करना है। और फेस वॉश तो जाहिर सी बात है आप दिन में कितनी भी मर्तबा लगाइए, कोई भी इसके अंदर जो है ना इस तरह की चीज नहीं है कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। तो फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद आपने डी स्किन क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें और आप ग्लो करते रहें और खूबसूरत होते रहें। इसी के साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों की कुछ कॉल्स पिक करूंगी क्योंकि ये वाला जो लिंक होता है वो कुछ कॉलर्स के नाम होता है, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। कुछ कॉल्स पिक कर लेते हैं।

ओके जी, सो तव्हां इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम कयो पिया नी, मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां नथा इस्तेमालु कयो त बाबा तव्हां इस्तेमालु कयो छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको आहे न वाइटमिन ई बीड्स आहिनि माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन सां तयारु कई वई आहे, डॉक्टर जी निगरानी में तयारु थियल आहे ऐं जनाब सिर्फ़ु ॿिनि रातिनि जे इस्तेमालु में तव्हांखे ॾींदी सफ़ा VIP रिज़ल्ट। सो तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी, तव्हां बि थी वञो सुहिणा सुहिणा प्यारा प्यारा मिठा मिठा।

बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करें। साथ साथ हमारे पास ही कुछ पैनल के मैसेजेस हैं तो वो पढ़ लेते हैं और इसी के साथ साथ टाइम की बड़ी किल्लत होती है हमारे पास। मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, आपको वेलकम करते हैं। बशीर लिगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लिगारी, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, की आयो सिस्टर तुम्हारी सफा भलिया तामदार की आयो। और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा ए बी रिंदर फ्रॉम नवाबशाह, प्लीज सॉन्ग लगाइएगा खबर है मुझे तोखा सवा सिंगर मास्टर मंजूर। ओके मैं कोशिश करूंगी आपका गाना सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये हमारे साथ हैं जी अच्छा नाम लिखा करें अपना पैनल के ऊपर जब भी आप मुझे मैसेज करें तो। और साइमा मीर कहती है अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माय बेस्ट आरजे सदफ की आले शो मस्त मस्त है, टॉपिक वो शैतान है जो ऐसा करवाता है इंसान तो बेस्ट होता है ना बाबा, यह गलत गाला। यानी मानू है जेगो एडो कुछ कन पिया तो ये शैतान कराए तो मानू जो को भी तो कोने को आए बाबा मानू पान वडो शैतान आज जे दौर में। और साइमा मीर कहती है सिद्रा निगत नाज प्ले करी, निगत नाज हलायो था आज जरूर सोनी जिला। और ये मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम आज सिद्रा आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, बताओ आप कैसी है, हम आपको दिल से वेलकम करते हैं। इमरान अली बिरोही भाई लाड़काना से मैं सुन रही हूं, क्या बात है इमरान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सजाद अली जमाली है सिटी नवाब शाह, शो इज नाइस, सॉन्ग प्ले कीजिएगा मुमताज मोलाई। ओके मैं कोशिश करती हूँ मुमताज मुलाई लगाएंगे। थैंक यू आप सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें करते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए गाने लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम बच जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिलि जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-8।
1: खुशख़बरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569-0300-33-8-55-69।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ साथ डायल करते जाइएगा 03 15 799 059।

सोनो भी सोनो आ कीअं न हुजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो करे पियो अगरि तव्हां बि सोणा थियण चाहियो था त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिली रहियो आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो डी स्किन फेस वॉश लॻायो पंहिंजे ख़ूबसूरती खे चमकायो ऐं हमेशह जे लाइ ख़ूबसूरत थी वञो उनखां अलावा जेको असां गॾु मौजूदु आहिनि सखर मोरो मीरपुर ख़ास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली ऐं लाडकाणे वारा बि सो जनाब बिल्कुलु प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में असां मौजूदु आहियूं सो तव्हांखे चवंदा भली कार ख़ुशि आमदीद तव्हांजो मोहबत हुई

अच्छा सजाद अली जमाली भा असांखे जेको आहे न गाने जी फरमाइश कई हुई सो असां ही गानो ॿुधोसीं हुन खां अलावा ॿियो गानो असांजी लिस्ट में मौजूदु आहे जेको निगत नाज़ जी आवाज़ में आहे ऐं हिन गाने जी फरमाइश असांखे साइमा मीर कई आहे।

ऐसे ये हकीकत है। ओके जी, अब्दुल्ला महर भाई ऐसा सगर मौजूद है। अब्दुल्ला महर भाई तव्हां वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो पिया, सो मोहबतूं आहिनि सोणे भाजूं। उन खां अलावा ऐसा सगर आहे, मतलब ही माण्हू खां उहो खुलियो दुश्मन भलो, छो जो अंदर बंद पोश माण्हूअ खां अलाह पनाह में रखे तव्हां खे ऐं असां खे, आमीन। अलाह ॾिनो बंबरो भाई हमारे साथ फ्रॉम नबीदाद बंबरो खां, अलाह ॾिनो भाई तव्हां जो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये हमारे साथ हेलो सिदरा मक़सूद मलाह हमारे साथ जी, मक़सूद मलाह आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं शोनी, कहती हैं आपकी जान में भी आ गई आपके साथ। अच्छा शोनी प्यारी प्यारी, आप जरा अपना ख्याल रखिए।

वाह वाह वाह वाह, राजा खान भाई की थे सिस्टर। बुरे वक्त में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। या बिल्कुल तमाम सही गाल कही राजा भाई। वस भाई कहते अदी से जो जवाब मतलब ही वो हुंदो आहे जेको पंजो कम कढी पोए वरी बीहर दिसंदो ना है। ओ या गाल बिल्कुल सही जवाब। उनका अलावा किशोर भाई कहते अदी मुजी ख्वाहिश आहे कराची में क्रीम तू पान खणी अच। चलो मां ईंदम त खणी ईंदम। उनका अलावा ये हमारे साथ हैं जी आदिल कहते हैं कि जवाब मतलब ही केर आहे। मतलब जी गाल कंदो हमेशा जडे हुन जो कम हुजे त भाव भाव चवंदो आहे। कम मुकियो त सलाम भी न वठंदो आहे ऐं सिर्फ़ फ़ाइदो ॾिसंदो आहे। हू तव्हां सां दोस्ती दिलि सां कोन कंदो आहे मतलब सां कंदो आहे। हिन लाइ तव्हांजी क़ीमत कोन्हे हुन जो कम क़ीमती आहे। मुश्किल में न मिलंदो अव्हांखे इहा हक़ीक़त आहे। जॾहिं तव्हांखे हुन जी ज़रूरत हुजे त बेज़ारी आहियां चवंदो आहे, पर जॾहिं हुन खे कमु हुजे त राति ॿ वॻे बि फ़ोन कंदो आहे। शुक्र न कंदो आहे। तव्हां केतिरी बि महिनत कयो हुन लाइ घटि आहे। हू हमेशह वधीक घुरंदो आहे पर पाण कॾहिं कोन ॾींदो। ऐं चौथा कूड़ो वॾो आहे। मतिलब ही जा वाइदा आसमान ते हूंदा आहिनि पर ज़मीन ते कॾहिं न। मुंह ते मिठो दिल में कारो सिंधी चवणी आहे। मतिलब ही दोस्त खुलियल दुश्मन खां बि वधीक ख़तरनाक आहे। सो मतिलब ही खां बचो। असल दोस्त उहो आहे जेको बग़ैर मतिलब जो पंहिंजो थिए, बग़ैर मतिलब जे पंहिंजो थिए। इहा बिल्कुलु हक़ीक़त जी ॻाल्हि कई तव्हां। सफ़ा वीआईपी वीआईपी पॉइंट तव्हां असांजे साम्हूं रखिया। अॼु खां पोइ असांखे ख़बर पइजी त मतिलब ही कहिड़ा आहे। अच्छा दीदार अली बिरोही भाभी असां सां गॾु मौजूदु आहे। कंहिं ताईं आ गया अची ख़ुशामदीद। ऐं जेके जेके माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कनि पिया उहे ॿुधाइनि बाबा त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए करे सोणा थी विया आहियूं। ऐं सोणा कीअं न थियो बाबा, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे। ऐं सिर्फ़ ॿ रातूं तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसंदा पाण खे। बिल्कुल जी पाण खे ॾिसंदा त सफ़ा ईअं सोणा चिकना ऐं सफ़ा चिमकंदा वतंदव। सो मर्द मायूं सभई इस्तेमालु कनि पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे जनाब इहो वाइटमिन ई बीट्स फार्मुलेशन सां जेको आहे न तयारु थियल आहे। सो तव्हां लाज़मी हिनखे ट्राए करे जो नाइट क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि इस्तेमालु करे ॾिसणो आहे। सो इहे ॿई चीज़ूं तव्हां साथ में लॻायो ऐं ॾिसंदा तव्हां त तव्हांखे केॾो ज़बरदस्त जेको आहे न रिज़ल्ट मिली रहियो आहे। सो तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, नथी मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03 1 5 7 9 9 0 5 9 5।

वाह वाह वाह, जो गाना ॿुधो सी निगत नाज़ी आवाज़ में ॿियो गानो असांजी लिस्ट में मौजूदु आहे जेको आहे जनाब ख़ुदा और मोहबत ओ एस जी। कल हिकिड़ी अदे खे चयोसीं त हलाईंदासीं, सो उहो कल अॼु आहे, सो असां हलायो आहे हीउ गानो ऐं गानो ॿुधंदासीं हुन खां अलावा जेको आहे सो तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा वञो। अब्दुल रज़ाक भाउ सां गॾु मौजूदु आहे, सो मोहबतूं आहिनि प्यारे भाउ जूं। बस भाई तव्हांखे प्रोग्राम वणे पियो, सो थैंक यू। मीर बेवस कहते हैं, क्या ख़रीदा क्या बेचा आगे इस बाज़ार में, जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की। वाह जी वाह, नाइस पोएट्री। हजार खान जतोई भाई सा सगट मौजूद आई, वालेकुम अस्सलाम। हजार भा खुश आयो, नी सफा मजे में। अच्छा मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैदराबाद से, आप शो सुन रहे हैं, कहते हवा अच्छी चल रही है और आपका शो भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू जी। और हजार भा तुम एडो वडो कॉमेंट करो है। चौथा योर टॉपिक आंसर अदी, लोग अक्सर सच्चाई इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें किसी अंजाम का डर होता है या फिर वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी तो बस मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए भी आजकल सच्चाई के मायने थोड़े बदल गए हैं। लोग अक्सर अपने एक्सपीरियंस और नजरिए से ही सच को देखते हैं, कभी कभी फैक्ट से ज्यादा। हाँ वैसे सही बात है, आजकल ऐसा है कि जिस इंसान की जैसी सोच है ना, वो अगले इंसान को वैसे ही जज करने लग जाता है। तो यहाँ पर मतलबी वाला जिक्र जो है वो थोड़ा समझ नहीं आया। खैर बहुत अच्छा, और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहम्मद अली खोसो भाई तव्हां जो मोहबत वाइन प्रोग्राम ॿुधो पिया। और किशोर भाई तव्हां जो जेको गानो आहे न उहो सुभाणे हलाईंदासीं, अॼु लिस्ट जेका उहा सफ़ा फुल थी वई आहे, गाना हारजनि पिया। सुभाणे तव्हां अचिजो।

ओके जी, जिन्हें हमसे मिलना गवारा ही नहीं, हमसे मिला ना करे, ये लाइनें इस सॉन्ग की मतलबी लोगों के लिए है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी लाइनें हैं वैसे। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी हुआ चाहता है। सो मुझे लगा था ए मंसारी आप सो चुके हैं। चले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ साथ मौजूद हैं। और वो तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन लोग हमारे साथ मौजूद रहे, प्रोग्राम में पूरा साथ दिया, प्रोग्राम में पूरे पूरे मौजूद रहे। आप लोगों का इनौशाला शुक्रिया। और कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत। पर इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे सुभाणे थियण वारी है। सो मोकलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सलामत। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान सामन मुआदे ते सयूं अज थींदियूं, मुआदे ते सयूं थींदे ही अपने हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर ट्रंप जे अॼु अमन मुआदे ते सयूं वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारनि इनकलाब फोर्स जो चवण आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजे सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप उन मौके खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जे साख खे नुक़सान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरतहाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में गैर ज़रूरी मौक़ो फराहम करे रही आहे। जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो ध्यानु पाकिस्तान तरफ़ आहे। इस्लामाबाद मुआहिदे ते सयूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतुनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी आइनी ऐं पुरमन ज़रियनि मां करणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फोर्म्स आहिनि। असां हर मसले जो सियासी हल करण लाइ पुरज़म आहियूं। इलेक्शन कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवा हेठि शिकायतुनि जे अज़हार लाइ थ्रूट एंड रिकेंसली एक्शन कमीशन क़ाइमु करण जी कोशिश कंदासीं। कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवा हेठि शिकायतुनि जे अज़हार लाइ सुरसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदारु अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे, उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूसु करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब करे चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। पीटीआई वारनि IMF खे ख़त लिखिया त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। IMF खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। शहबाज शरीफ हींअर राति महिनत न करे हा त मुल्क दिवालो थी चुको हुजे हा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक जमहूरियत जी आछ कई, काश अव्हां उन वक़्त ई मिसाक जमहूरियत वारी आछ मञो हा। रतदुरबट सां हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, बजड़ा मारिजी विया। घोट मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिन्हनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। 45 साल लालू जोयो ऐं 55 साल राजा जोयो तौरु सुञाणप, लाश इस्पताल मुंतकिल। वाटसन चवण आहे त जतोई बिरादरी हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। अॻु में बिरादरी जे हिकु अहलकार खे क़तल कयो वियो हो। त्रेवण में दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो CCTV ऑपरेटर कराची में फुर दौरान मज़म्मत ते क़तल। कराची जे सोराब गोठ वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि नौजवान शाहिद सोलंगी खे फुर मज़म्मत ते गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। इतलात हिकु घर में रोज़ाड़ो मची पियो। वेझो अदड़ो शख़्स जो अंब जे वण मां फाहु लॻल लाशत, 16 वाटरबट सिखो कोलीअ जो वण मां फाहु लॻल लाशत कयो वियो। नशो करण खां मना कयो त हुन कावड़ जी आपकात कयो। पीर जो घोट में शहरनि जो वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे अॻियां धरणो, नारेबाज़ी। शहरनि चयो त पीर जो घोट ऐं भर पासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़तल ऐं फुर जा वाकिया मामूल बणिजी विया आहिनि। हुकूमत अमन बहाल कराए

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: हल करण लाइ मुनासिब फोर्म्स आहिनि, असां हर मसले जो सियासी हल करण लाइ पुरज़म आहियूं। इलेक्शन कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवा हेठि शिकायतुनि जो अजल लाइ थ्रूट एंड रिकंसिलिएशन कमीशन क़ाइमु करण जी कोशिश कंदासीं। सदर सभा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान नमूना किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एतिजाज़ अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबिके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। पीटीआई वारनि आईएमएफ खे ख़त लिखिया त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। आईएमएफ खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। शहबाज शरीफ ॾींहं राति महिनत न करे हा त मुल्क दिवालो थी चुको हुजे हा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक जमहूरियत जी आछ कई, काश अवां उन वक़्तु ई मिसाक जमहूरियत वारी आछ मञियो हा। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार जो मिस्र ऐं तुर्क परडे॒ही वज़ीरनि सां फोन ते राब्तो। ख़िते जे तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। परडे॒ही तर्जुमान मूजिबि ॻाल्हि ॿोल दौरान अमरीका ईरान विच में मफ़ामत लाइ हाकारी अकबराई जी आजियां, हाकारी अकबराई सां ख़िते में चटदार अमन जो रस्तो खुलण जी उमीद ज़ाहिर कई। अॻवाणनि जो थींदड़ अकबराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूम।

गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमार्ट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

डूंगर डुखो यंके दिलासा दे जन घणो कुछ जे तिन के जिना ता हो तवन तो की संदा तिन पण पेर डुखो ही

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शोबे के नुकसान का बचाने लाए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर्स मुख्तस किया गया। सुध समा वाले फाकी वजीर अता तारड़ चयो है समूरी दुनिया कबूल कयो तो पाकिस्तान अमन लाए किरदार अदा कयो है। अज कौमी झंडे की इज्जत है, मैशत बे दुरुस्त रस्ते ते गामजन है। जिते मुल्क की इज्जत की गाल हो तो उते पैंजी जात की इज्जत महसूस करन घुर्जे। वफाकी वजीर कौमी असेंबली में बजट सेशन के खिताब कंदे वधीक चयो तो बजट ते तनकीद एक्सपोजिशन जो हक है पर हाकारी कदमन की वाखाण थियन घुर्जे। समूरन शोबन सा मुशावरत बाद बजट तैयार कई वही, हर तबके के फायदो पहुंचाया वो। पीटीआई वारन आईएमएफ के खत लिखा तो पाकिस्तान के कर्ज न डनो वे, आईएमएफ के लिखल खत तारीख जो हिस्सो आहन। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है आजाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान की साख के नुकसान दे रही है। अड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत ए इसराइल गठजोड़ के पैंजा मकसद हासिल करण में गैर जरूरी मौके फराहम कर रही है। जारी कल बयान में बिलावल भुट्टो चयो तो इन वक्त पूरी दुनिया जो ध्यान पाकिस्तान तरफ है। इस्लामाबाद मुआदे ते सयूं पाकिस्तान लाए तारीखी लम्हो हों, सियासी शिकायतन इख्तिलाफन जो हल जमहूरी आइनी ए पुरमन जरिये में करण घुर्जे। पार्लियामान ए सियासी अमल अड़ा मसला हल कर मुनासिब फॉर्म्स आहन। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो मिस्र ए तुर्क परदेही वजीर से फोन से राबतो, खिते की तबियत ख्याल की दे वठ। परदेही तर्जुमान मूजिब गाल बोल दौरान अमरीका ईरान विच में मुफामत लाए हाकारी अकबराई जी आचियां। आकारी अकबराई से खिते में जटादार अमन जो रस्तो खुलण की उम्मीद जाहिर थी है। अगवाणन जो थींदड़ अकबराई के हवाले से राबते में रहने इतफाक। कतर के वफद पारा तेहरान जो दौरो, ईरानी मीडिया मूजिब कतरी वफद ईरानी अख्तियार से गजी इसराइल से जंग की खात्मे से ताजी अकबराई जो जायजो वरतो। दौरे जा वधीक तफसील सामू न अची सकया। ईरान ए अमरीका जंग की खात्मे लाए मुआदे से सयूं अज थींदियूं या न, अमरीका ईरान के बयान से सूरत हाल वाजे न थी सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो ईरान से अमन मुआदे से सयूं अज थींदियूं। मुआदे से सयूं थींदे ही आबना हुरमत सभी लाए खुली वेंदो। सुकून थियण बाद मुनासिब वक्त से एटमी मवाद की बाकियात भी हासिल कर वठंदासी। ईरानी फौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज अमन मुआदे से सयन वाली दावा रद्द कर छी। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स चवण हो तो कें भी मुआदे से सयूं न करण बाबत आगाह कर चुका आयु। सदर ट्रंप सही वाली तकरीब पांजी सालगिरह के करे 14 जून से करण चाहे तो। ट्रंप इन मौके के अलामती अहमियत दई पांजी जाती मशहूरी जो प्रोग्राम बनाए रो है।

0: रतोदेरो वेझो हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल कयो। मक़तूलनि जे 45 वरनि जे लालू जोयो ऐं 55 सालनि जे राजा जोयो तौर सुञाणप। लाश इस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवणु आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। अॻु बि संदसि बिरादरी जे हिकु अहलकार खे क़तल कयो वियो हो। सेवण में दरगाह हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराचीअ में फुर दौरान मज़ामत क़तल। कराची जे सोराब ॻोठ वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि नौजवान शाहिद सोलंगीअ खे फुर मज़ामत गोलियूं हणी क़तल कयो। इतलाउ ते घर में रोजराड़ो मची वियो। वगण ऐं नओं देरो वेझो टे नींगर शाख ऐं दादू कैनाल में वेंझंदे ॿुॾी विया, हिक खे बचायो वियो। वगण वेझो ॻोठ खरी जा रहवासी नींगर राबेल ऐं इश्फाक मुगेरी गट शाख में वेंझंदे ॿुॾी विया। ॻोठाणनि 13 सालनि जे इश्फाक खे बचाए वरितो। 12 वरनि जे राबेल जो लाश हथ। नओं देरो वेझो बि 6 सालनि जो मासूम नींगर दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। ॻोठ साबुल जोड़े जो में मासूम नींगर फरहान पुटु एजाज शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। गोलाचारी। पीर जो ॻोठ में शहरनि जो वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे आॾो धरणो नारेबाज़ी। शहरनि जो चवणु हो त पीर जो ॻोठ ऐं भरपासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़तल ऐं फुर जा वाकिया रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। हुकूमत अमुन बहाल कराए। सिंध में गर्मीअ मथां वरी बिजलीअ जी लोड शेडिंग अवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद में मुस्लिम लीग फे पारां बिजली जी डिघी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर माथेलो जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बि बिजली बंदिश ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। सजावल जोड़े जो में बिजली जी मेन लाइन जो तारूं चोरी थियण ऐं बिजलीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि धरणो हयो। मंज़ूराबाद में मांझनि जे शहरनि पारां बिजली जी डिघी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रैली कढी वई। उॾेरो लाल में बि बिजली जी डिघी लोड शेडिंग ऐं वापरा इंतिज़ामिया जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। शहरनि ऐं वापारियुनि बिजली जी अथरात लोड शेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो। ऐं सिंध में पाणी जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार तबिको सख़्त परेशान। टिकराठो जे मुबारकपुर ऐं बंबली माइनर में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार ऐं हारनि एहतजाज कयो। सन में बि माजद तालुके जे छछर पंपिंग स्टेशन जी बंदिश ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं हारनि जो एहतजाज। अॻवान जो चवणु हो त पाणी जी खोट सां पोखियल फसल सली रहिया आहिनि। पाणी जी खोट ख़तम करे आबादगारनि खे परेशानी खां बचायो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

Many have some clean run banana sake, caught green bold Bartlett. Extras rahe 29, is tarah 50 over mein 5 wicket pe 274 runs banaye. Bangladesh ne jisme Soumya Sarkar ne pehli ball pe pehle out sirf 2 tha, phir Tanzeem Hasan out hue 53 pe, teesri wicket 61 pe, Shant out hue 84 wicket 53 pe, phir 5th wicket jo hai 4th wicket 246 pe, 5th 261 pe giri. Bartlett ने 8 ओवर किए 47 रन दिए, दो खिलाड़ी आउट किए. रेले मेरिडिथ ने 7 ओवर में 41 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया. डॉर्विच ने 8 ओवर 55 रन, एक विकेट. कैमरॉन ग्रीन 6 ओवर 18 रन दिए, दो मेडन किए. मैट क्रेनशॉ ने 9 ओवर किए 44 रन देकर दो आउट किए. एडम जाम्पा 10 ओवर 48 रन, कोई विकेट नहीं, जबकि लवस शेन ने 2 ओवर किए 10 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया. तक अपने टारगेट का तआक्कुब कर रहा है जी, और 4 विकेट पे 187 रन उन्होंने बना लिए हैं और जो है वो अच्छे खासे अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी अभी 17 ओवर का खेल बाकी है, 33वां ओवर है और उन्हें अब 87 ही रन की और जरूरत है 88 की. रेनशॉ बोल्ड हुए, शरीफुल इस्लाम की गेंद पे कोई रन नहीं बना सके. एलेक्स कैरी, कॉट, सरकार, बोल्ड, तस्कीन 8 रन बनाए 16 गेंदों पे. लेविस शेन ने 29 रन बनाए 45 गेंदों पर, एक चौका लगाया, उनका कैच किया नूरुल हसन ने शरीफुल इस्लाम की गेंद पे. कैमरॉन ग्रीन इस वक्त नॉट आउट में 20 रन पे 26 गेंदें खेलकर एक चौका एक छक्का लगाया है. एक्स्ट्राज हैं इस वक्त 5 आने वाले खिलाड़ियों में, पीक हैं, बार्टलेट हैं, बेन डॉर्मिश हैं, एडम जाम्पा हैं और मेरिडिथ हैं. जहां तक अब तक बंगाली बॉलर्स का ताल्लुक है, तस्कीन अहमद 6 ओवर 33 रन एक विकेट, मुस्तफिजुर 5 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं, महंगे रहे हैं. शरीफुल इस्लाम 6 ओवर 35 रन और तीनों विकेट पहली उन्होंने आखिरी दी. और उनको भी विकेट नहीं मिली है. ये है सुडल बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो करंटली मुकाबला जारी है मीरपुर ढाका में. उसके अलावा जनाब जो मुकाबला जारी है इस वक्त वुमेन का, नेदरलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे वो मुकाबला है और ये मुकाबला खेला जा रहा है बर्मिंगम में. और 139 रन बनाए नेदरलैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर. बांग्लादेश ने 14 ओवरों में 4 विकेट पे 101 रन बना रखे हैं. 39 रन चाहिए, 36 गेंदें बाकी हैं और इनके पास 6 विकेट बाकी हैं. स्कोर कार्ड में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब इस वर्ल्ड कप वुमेन इंपॉर्टेंट गेम की. बांग्लादेश की खवातीन ने पहले बैटिंग की, जिसमें पीटर साइजर ने, इनफैक्ट नेदरलैंड की वुमेन ने पहले बैटिंग किया, आई बेग योर पार्डन. साइजर ने स्कोर किए 16 रन 13 गेंदों पर, 2 चौके. उसके अलावा मोल किनबर ने 11 रन स्कोर किए 7 गेंदों पर, 2 चौके. बेबेटी डी ने 50 रन की इनिंग्स खेली, 45 गेंदों पर 5 चौके लगाए और बेबेटी डी टीम की कैप्टन भी है और ये रन आउट हुई. उसके अलावा केल्स ने 4 रन स्कोर किए 5 गेंदों पर. रॉबिन रिजिक ने 13 रन स्कोर किए 14 गेंदों पर, एक चौका लगाया. इसके अलावा खुराना ने 1 रन बनाया 4 गेंदों पर. ओवर डिच ने 9 रन बनाए 9 गेंदों पर. आरिस डिवेलिंग ने 13 रन स्कोर किए 11 गेंदों पर और वो नॉट आउट रही. कैरोलाइन डीलेंगे ने 1 रन स्कोर किया 4 गेंदों पर, जबकि सिल्वर ने 10 रन स्कोर किया 8 गेंदों पर, एक चौका लगाया और वो नॉट आउट रही और एक्स्ट्राज रहे थे 11. इस तरह 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए 20 ओवर्स में. यहां पर नेदरलैंड की औरतों की टीम ने पहली विकेट गिरी थी 14 पर, दूसरी विकेट गिरी 36 पे, तीसरी विकेट 47 पे, चौथी 71, पांचवी 76, छठी विकेट 113, उसके बाद सातवीं विकेट जो है वो 115 और आठवीं विकेट 116 पे गिरी थी. बांग्लादेश के लिए फरीहा ने 4 ओवर किए 32 रन 1 विकेट. मारूफा अख्तर ने 4 ओवर किए 31 रन 2 विकेट ली. अख्तर मेंगला ने 4 ओवर किए 39 रन लेकर एक खिलाड़ी आउट किया. राबिया खान ने 4 ओवर 26 रन

0: रन्स, एक विकेट, और मूनी ने चार ओवर में 17 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग अभी जैसा कि मैंने बताया जारी है। उनके लिए जवेरिया फिरदौस ने 50 रन की इनिंग्स खेली 33 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाकर। जिलारा एक्टर ने 26 रन स्कोर किए 23 गेंदों पर 1 चौका लगाया। सुल्ताना कोई रन बना सकी टीम की कैप्टन, उन्होंने एक ही गेंद का सामना किया। सोबाना मास्टरी ने 4 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर, वो रन आउट हुई है। शर्मिन इस वक्त 13 रन पे नॉट आउट हैं और शौराना इस वक्त 6 रन पे नॉट आउट हैं। एक्स्ट्रा हैं 3 और 4 विकेट पे स्कोर है 102 14.1 ओवर का खेल हुआ। पहली विकेट 67, दूसरी 67, उसके अलावा तीसरी विकेट 79 और चौथी विकेट 85 पे गिरी है बांग्लादेश की खवातीन की टीम की। ज्वेलिंग ने 2 ओवर किए हैं 13 रन दिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया है। हितार ने 3 ओवर किए 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं। रुबीना ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं। सिल्वर ने 2 ओवर में 18 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। इसके अलावा वेंडर वॉन्ग ने 2 ओवर में 20 रन दिए। कैरोलाइना डिलांगे सबसे कामयाब बॉलर हैं अब तक की, 3 ओवर 21 रन और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर रखे हैं, जबकि 1.4 ओवरों में 6 रन देकर कोई विकेट नहीं मिली है ओवर डिजिट को। तो ये है सूरतेहाल और अभी भी बांग्लादेश की टीम को 32 गेंदों में 35 रन की जरूरत है इस ऑल इम्पोर्टेंट वुमेन वर्ल्ड कप के मुकाबले। तो क्रिकेट का खेल न सिर्फ अब मर्दों में बहुत मकबूल है बल्कि खवातीन में भी जबरदस्त अंदाज में इसे फॉलो किया जाता है और वो खवातीन का T20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर द बैनर ऑफ ICC और जबरदस्त अंदाज में इन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है। जो चौथा मुकाबला था वर्ल्ड कप का जो कल रात खेला गया था साउथहैम्पटन में, वहां न्यूजीलैंड की टीम ने 162 रन बनाए थे 6 विकेट पे और वेस्ट इंडीज की टीम ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर टारगेट अपने नाम करके मैच अपने नाम कर लिया था। और आज जो दूसरा मुकाबला है, इसके बाद जो मुकाबला होगा, जो इस वक्त बांग्लादेश और नेदरलैंड का मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, प्रोग्राम के अगले से उसका जिक्र करेंगे। यहाँ थोड़ा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के हवाले से बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने जब 162 रन बनाए तो उसमें गेज ने 39 रन बनाए थे 29 गेंदों पर 8 चौके लगाए, वो अच्छे क्रिकेटर हैं। फिलिमर ने 8 रन बनाए थे 11 गेंदों पे। टीम की कैप्टन जो है मेलिकर, उन्होंने 5 रन स्कोर किए 6 गेंदों पर। सोफिया डिवाइन ने 22 रन बनाए थे 15 गेंदों पर, 3 चौके लगाए थे। 40 रन स्कोर किए थे हॉलीडे ने 32 गेंदों पर, 5 चौके लगाए। मैडी ग्रीन ने 35 रन बनाए 22 गेंदों पर, 4 चौके और 1 छक्का। शार्प ने 5 रन बनाए 4 गेंदों पर, 2 रन बनाए थे। जेस्कर ने 2 ही गेंदे के लिए 6 विकेट पे 162 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे। वेस्ट इंडीज के लिए 9 रन देकर 1 ओवर किया था जायदा ने, उसके अलावा हेक्टर ने 1 ओवर में 9 रन दिए थे। 4 ओवर किए थे मैथ्यूज ने 31 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। डॉटिन ने 2 ओवर किए 22 रन से 1 विकेट। आलिया अलाइन ने 4 ओवर किए 27 रन 4 विकेट ने पिकअप द बॉलर रही। एफी फ्लेचर 4 ओवर 26 रन कोई विकेट नहीं। उसके अलावा रामहर्क ने 3 ओवर में 25 रन दिए और जोसेफ ने 1 ओवर में 13 रन दिए। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, वेस्ट इंडीज के लिए कायना जोसेफ रन आउट हुई 2 रन बनाकर 4 गेंदों पर। हीली मैथ्यूज जो कि टीम की कैप्टन है 48 रन बनाए 37 गेंदों पर, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा शेमन कैम्बल ने 90 रन नॉट आउट किए 62 गेंदों पर, 7 चौके और 3 छक्के लगाए। डरिंद्र डॉटिन ने 6 रन स्कोर किए 8 गेंदों पर, और जबकि जजारा कैरेक्सटन नॉट आउट हुई 6 रन बनाकर 8 गेंदों पर, जबकि 11 एक्स्ट्रा से वेस्ट इंडीज ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर 19.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया। पहली विकेट 12, दूसरी 86 और तीसरी विकेट 126 पे गिरी थी। न्यूजीलैंड के लिए मायर ने 4 ओवर में 27 रन दिए कोई विकेट नहीं। ब्रीलिंग ने 2 ओवर किए 21 रन दिए, उनको कोई विकेट न मिली। जैसीकर ने 4 ओवर 17 रन और 2 विकेटें। नेंसी पटेल ने 2 ओवर किए 22 रन और कोई विकेट उनको न मिल सकी। मेलिकर चार ओवर 41 रन देट गई, उनको भी कोई विकेट न मिली। और सूफिया डिवाइन ने 3/5 ओवर किए, 27 रन जो दे गई और उनको भी कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं हो सकी। तो ये था जो चौथा मुकाबला था वुमेन वर्ल्ड कप के सिलसिले में, जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला गया, उसका हाल। बांग्लादेश की टीम अभी भी अपने टारगेट के ताकुब में है और बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट पे 112 रन बना लिए हैं, 26 गेंदों पर 28 रन बनाए चाहिए बर्मिंगम के मुकाम पर बांग्लादेश वुमेन को नेदरलैंड वुमेन के खिलाफ, और अभी उसके पास 6 विकेट बाकी, अभी एक रन और बनाया है। 113 को हो दिस मैच इज लाइव, जबकि 6:30 बजे पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, एक बहुत बड़ा वुमेन वर्ल्ड कप का टाकरा शुरू होने वाला है, उस पर बात करेंगे कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है और क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस वक्त हम आ गए हैं प्रोग्राम के पहले ब्रेक की जाने, आइए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक से जब लौटेंगे वी विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। लेट्स टेक अ ब्रेक।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंडअप जो हर संडे की शाम आप मेरे साथ सुनते हैं। जहां भी रहिए खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए हमारे प्रोग्राम को। मैं जानता हूं कि आप स्पोर्ट्स लवर हैं और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम वैसे ही सुनने वालों की एक तरह से जिसे कहना चाहिए जान होते हैं, और उनको एक जज्बा देते हैं, एंथुसिएज्म देते हैं और खेलों का शौक। पर हम जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो खेलों के हवाले से बहुत नाम रखता है, बहुत शोहरत रखता है, चाहे वो क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, साथ साथ जो है हॉकी हो और बहुत सारे खेलों में, जो जेवलिन थ्रो में भी अर्शद नदीम को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने उन पर एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम भी किया था, मुझे याद है पिछले साल। इस वक्त बांग्लादेश की जो वुमेन टीम है वो तो मैंने बताया आपको कि वो जीत चुकी है, उन्होंने तो अपने मुल्क को खुशी फराहम कर दी है। लेकिन वुमेन की जो बांग्लादेश की जो मेन टीम है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेल रही है, तीसरा ओडीआई दो मुकाबले वो जीत गई है। वर्ल्ड कप से उन्हें बाहर कर दिया गया था इंडिया की मोनोपोली के जरिए, जैसा कि हम जानते हैं जब उन्होंने इंडिया जाने से इनकार किया था और न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा किया था, तो आईसीसी कह लें जो कि इस वक्त एक तरह से इंडिया ही की नुमाइंदा आईसीसी है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने बांग्लादेश को बाहर कर दिया था और कहा था कि एक ही ऑप्शन है, या तो इंडिया में खेलें या फिर आप न खेलें, एंड दे ऑप्ट नॉट टू प्ले, और वो नहीं खेले थे। बहरहाल उनकी मेंस की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ दोनों ही पहले वनडे मैच जीते हैं और तीसरे में सुर चढ़ लिया है कि बांग्लादेश ने 274 बनाए। ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त करंट जो सिचुएशन है वो ये कि दे आर फाइव डाउन एट 221, 221 पे पांच खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पीक खेल रहे हैं 12 रन पे 19 गेंदों पे दो चौके लगाकर, और कूपर कॉनली ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है, 119 रन बना रखे हैं 115 गेंदों पे 11 चौके और 3 छक्के लगाकर, 57 गेंदों पे 56 रन अभी भी चाहिए, और अभी भी अगर यहाँ पे कोई विकेट गिर जाती है तो जिस तरह की बांग्लादेश में कंडीशंस होती हैं या जिस तरह के इनके स्पिनर्स परफॉर्म दिखाते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें खतरा है कि बांग्लादेश इनको एक बार फिर बैकफुट पे ले जाए ऑस्ट्रेलिया को और एक और मैच जीत जाए। बहरहाल अगर नहीं भी जीतते तो 2-1 से सीरीज जीतना ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड फेमस टीम के अगेंस्ट एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बांग्लादेश अपने मुल्क में खेल रहा है, बट स्टिल विक्ट्री इज अ विक्ट्री, और ये बड़ी एक जबरदस्त कामयाबी होगी अगर वो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराकर व्हाइट वॉश कर दें तो। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ये नतीजा भी तकरीबन जाहिर है कि अब आ ही जाएगा आधे पौने घंटे तक, एंड यू विल गेट टू नो कि हु वन द मैच। तो ये सूरत हाल है। आज एक और जो सीरीज जारी है वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान है। पहला T20 वेस्ट इंडीज जीत गई थी, दूसरा श्रीलंका ने 37 रन से अपने नाम किया है। किंगस्टन जमैका में गुज़श्ता शब ये मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 194 रन बना डाले। निसांका कुछ खास न कर सके, कॉट जोसेफ बोल्ड फोर्ड 7 रन बनाए। पाशाल मेंडेस जो की टीम के कैप्टन है स्कोर 31/19 बॉल विद द हेल्प ऑफ 2 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस, और पाशाल मेंडेस वही है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई थी पाकिस्तान के लास्ट PSL में। कमेल मिश्रा ने 61 रन बनाए नॉट आउट 40 गेंदों पे 4 चौके और 3 छक्के लगाए, बैटेड विद सम ब्रूटैलिटी। रतनायके ने 1 रन बनाया 6 गेंदों पे, कॉट होप बोल्ड स्प्रिंगर। कमिंडो मेंडेस ने 24 रन बनाए 20 गेंदों पे 2 छक्के लगाए, अच्छी बैटिंग की, कॉट रिजल्ट बोल्ड फॉर्ड। डोसन शानका कॉट हेटमायर बोल्ड जोसेफ 58 रन बनाए महज 24 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के लगाए, जबकि वेला लगे ने 1 रन बनाया 2 गेंदों पर 11 एक्स्ट्राज रहे 194 रन बनाए उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर। अभी हजारंगा बाकी थे, तिक्सना बाकी थे, चमीरा एंड ईशान मलिंगा वॉज लेफ्ट इन द बैटिंग एज वेल। फर्स्ट विकेट फेल एट 42/42, थर्ड फेल एट 43, चौथी विकेट 88, फिफ्थ विकेट टंबल्ड एट 191 एंड सिक्स्थ फेल एट 194। अकील हुसैन ने 2 ओवर के 11 रन दिए, मैथ्यू फोर्ड 4 ओवर 38 रन 2 विकेटें, शेफर्ड 3 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं, शिमार जोसेफ 4 ओवर 32 रन 3 विकेटें, शमार स्प्रिंगर 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, और रॉस्टन चेज ने 3 ओवरों में 27 रन दिए। बट आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट ब्रिंग द अकील हुसैन बैक जिन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर किए। वेस्ट इंडीज के लिए ब्रेंडन किंग सिर्फ 2 रन बना सके, LBW हो गए चमीरा के अगेंस्ट। शाय होप LBW को वलैलगी की गेंद पर 6 रन बनाए 4 गेंदों पर, 36 रन बनाए हेटमायर ने, रन आउट हो गए 4 चौके और 2 छक्के लगाए, शेपिंग वेल
रोमन पावल कॉट हजार रंगा बोल्ट से 143 रन बनाए 26 गेंदों पर, 5 चौके और 2 छक्के लगाए और फिर टीम स्ट्रगल कर गई। शेफर्ड 14 रन बना सके, कॉट निसन का बोल्ड हजार रंगा 11 गेंदों पर, रॉस्टन चेज कोट मिंडिस पाउल शमीरा 17 गेंदों पर 17 रन बना सके, शेफर्ड एलबीडब्ल्यू बोल्ड हजार रंगा कोई रन बना सके, ने जनाब 8 रन बनाए 6 गेंदों पर, कॉट शमीरा बोल्ड वेले लगे, शेमार स्प्रिंगर कॉट ट्रेफनाई के बोल्ड शमीरा 1 रन 6 गेंदों पर, अकील हुसैन कोल्ड में शारा बोल्ड हजार रंगा 14 रन बनाए 6 गेंदों पर, 2 छक्के लगाए उन्होंने अच्छी बैटिंग की, शिमार जोसेफ नॉट आउट रहे 11 गेंदों पर, 5 रहे एक्स्ट्रा स्क्रीन इस तरह 157 रन वेस्ट इंडीज ने मजमुई तौर पर स्कोर किया और 37 रन से मुकाबला हारे। फर्स्ट विकेट वेंट एट 7, सेकंड वेंट डाउन एट 9, तीसरी विकेट 90 पे गिरी और उस वक्त मैच में एक तरह से वापस आती दिखाई दे रही थी वेस्ट इंडीज, लेकिन फिर चौथी विकेट 91, पांचवी 108, छठी 108, सातवीं 119, आठवीं 122, नवीं 144 एंड द लास्ट विकेट फेल एट 157। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी था जब वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई। वेला लगे ने 3 ओवर की 28 रन, 2 विकेटें हासिल की, दुशामांत चमीरा 3.1 ओवर 9 रन और 3 विकेटें, एहसान मलिंगा 3 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं, महेश थिक्साना 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 38 रन 3 विकेटें और डॉसन शानाका ने 1 ओवर में 6 रन दिए। दैट्स हाउ श्रीलंका लेवर्ड द T20 सीरीज आफ्टर 2 मैचेस विद 1 ईच और देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल आगे बनेगी। तो ये सूरत हाल रही है इन मैचेस की, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की एक मतलब फिर मैं आपको चलते चलते अपडेट दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट चेज कर रहे हैं 275 रन का वो कहां तक पहुंचे हैं और क्या सूरत हाल है उनकी मीरपुर बांग्लादेश में, और देखना ये है कि किस तरह से टारगेट को चेस कर पाएंगे या नहीं। मुकाबला यकीनन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है इन दोनों टीमों के दरमियान। 42 ओवर के बाद 233 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं, ऑस्ट्रेलिया को 42 रन चाहिए, 48 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम के मेजबान राणा इशफाक को दीजिए इजाजत नेक्स्ट संडे तक। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह निगहबान।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जी साख खे नुकसान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में गैर ज़रूरी मौक़ो फराहम करे रही आहे। जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो चयो त हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो ध्यानु पाकिस्तान तरफ़ आहे। इस्लामाबाद मुआदे ते सयूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतुनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी आइनी ऐं पुरमन ज़रिए कढणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फॉर्म्स आहिनि। इलेक्शन कमीशन खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवाह शिकायतुनि जे अज़ाले लाइ ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन क़ाइमु करण जी कोशिश कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो बजट 2026-27 में ज़रखेज़ स्कीम तहत 750,000 नंढनि आबादगारनि खे 300 अरब रुपियनि जा बिना व्याज कर्ज़ फराहम करण जो ऐलान। बजट दस्तावेज़ मूजिब ज़री मशीनरी लाइ 5 अरब रुपया सब्सिडी लाइ मुख़्तस। 12 एकड़ खां घटि ज़मीन मालिकनि खे 1500 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कई वेंदी। भाण जा अघु घटि रखण लाइ भाण कंपनियुनि खे 20 अरब रुपियनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। मौसमियाती तब्दीलीअ खे मुंहुं ॾियण ऐं ज़री शोबे खे नुक़सान खां बचाइण लाइ आलमी बैंक जी मदद सां 20 करोड़ डॉलर मुख़्तस कया विया। क़ौमी असेंबली में नए माली साल जे बजट ते बहस। अपोज़िशन मेंबर्स पारां मुल्क अंदर वधंदड़ महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। MNA शाहिद खटक जो चवण हो त मुल्क में घाटे टोड़ महांगाई आहे। तेल जा अघ तारीख़ जे बुलंद तरीन सतह ते मौजूद आहिनि। विचोले तबिके जे इस्तेमाल जूं शयूं बि महांगियूं थी वियूं आहिनि। घटि आमदनी वारा परेशान आहिनि। उस्मान बादैनी चयो त बलोचिस्तान में मौजूद मैदनियात सां पाकिस्तान जो कर्ज़ ख़तम थी सघे थो। गवादर पोर्ट ते 25 साल खां हले पियो। उतां जे माण्हुनि खे पीअण जो साफ़ पाणी बि नथो मिले। सुत समा वारे फाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट इजलास खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण बि थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयारु कई वई आहे।

0: अब आप सुनेंगे
1: गुजरियल साल की भेट में पानी होने बावजूद साजिश तहत सिंध के पैं हिस्से जो पानी नो दिनो वे सिंध में पानी खोट से पूरे मुल्क की मैशत मुत हिस्से जो पानी फराम न करण के सिंध खिलाफ साजिश करार दे छो सैद मुराद अली शाह है तो गुजरियल साल की भेट में पानी होने बावजूद साजिश तहत सिंध के पैं हिस्से जो पानी नो दिनो वे सिंध में पानी खोट से पूरे मुल्क की मैशत मुतासर थी सखर बिरा के दौरे दौरान मीडिया से गाले वे वजीर मुराद अली शाह तो टे ढी अग वजीर आजम के खत लिखी हो तो हैरान आया तो पानी होने बावजूद सिंध के गुजरियल साल का भी घट पानी दिनों वो मंगला तरबेला बेन डेमन में पानी स्टोर कर पो वे यहा सिंध खिलाफ साजिश है अस टेलीमेट्री सिस्टम के मॉनिटर कर रहा आयु पैं हिस्से जो पूरा पानी वी सखर बराज सौ वरन का मुल्की मैशत में किरदार अदा कर रही है फर्श जो सिर्फ 15 फुट हिस्सों कमजोर थो जैसी मरम्मत कई वही है।

0: समावा रिफाकी वजीर अतातार चयो आहे त समूरी दुनिया कबूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो आहे। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशियत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाकी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतिजाज अपोज़ीशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयारु कई वई, हर तबिके खे फ़ाइदो पहुचायो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो मिस्र ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां फ़ोन ते राब्तो, ख़िते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। परॾेही तर्जुमान मूजिब ॻाल्हि ॿोल दौरान अमरीका ऐं ईरान विच में मफ़ाहमत लाइ हाकारी अॻभराई जी आजी आहे। हाकारी अॻभराई सां ख़िते में जटादार अमन जो रस्तो खुलण जी बि उमेद ज़ाहिर कई वई। अॻवाननि जो थींदड़ अॻभराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते बि इतफ़ाक़। कतर जे वफ़द पारां तहरान जो दौरो, ईरानी मीडिया मूजिब कतरी वफ़द ईरानी अख़्तियारनि सां गॾिजी इसराइल सां जंग जे ख़ात्मे ते ताज़ी अॻभराई जो जाइज़ो वरितो। दौरे जा वधीक तफ़सील साम्हूं न अची सघिया। लबनान जी राजधानी बेरूत ते इसराइली फ़ौज जा मिज़ाइल हमला, भॼण शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। परॾेही मीडिया मूजिब बेरूत जे ॾाखिणे इलाइक़े में इमारत ते हवाई हमले में भॼण शहीद थी विया, चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। जंगी जहाज़नि चार गाइडेड मिज़ाइलनि सां बेरूत जे ॾाखिणे इलाइक़े खे निशानो बणायो। ईरान ऐं अमरीका जंग जी ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमरीका ऐं ईरान जे बयाननि सां सूरतहाल वाज़े न थी सघी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त ईरान सां अमुन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ई आबनाए हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी अॼु अमुन मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स जो चवणु आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप उन मौक़े खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशवरीअ जो प्रोग्राम बढ़ाए रहियो आहे। रतो देरो वेझो हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल कयो। मक़तूलनि जी 45 वरनि जे लालू जोयो ऐं 55 वरनि जे राजा जोयो तौरु सुञाणप, लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवणु आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि नौजवाननि खे क़तल कयो आहे। रोहड़ीअ में दरगाह सदरुद्दीन शाह वेझो हथायल लाश जी रियाज़ चौहान तौरु सुञाणप, नौजवान जो लाश फिटो करण वारे वाक़िए जा सीसीटीवी फोटेजिस मंज़रियाम ते अची विया। फोटेजिस में अणॼातल शख़्स खे नौजवान जो लाश सवारीअ मां लाहिण बाद गेहलींदे ॾिसी सघिजे थो। पुलिस मूजिब नौजवान सखर जे इलाइक़े थर्मल मिल रोड जो रहवासी आहे। इश्फाक खे बचाए वरितो। बिल जो लाश नौदेरो भरिसां 6 वरनि जे मासूम खे दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। गोड़ साबुर जेड़ो जो में मासूम नींगर फरहान शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो, लाश हथ घर में को रामतल। टंडो मोहम्मद खान में बुरड़ी शाह करीम वेझो नौजवान पुरस्कार नमूने फौत, वारसन पारां क़तल जो इल्ज़ाम, लाश रखी धरणो। ॻोठ रहीम बख़्श रिंद वासी 20 वरनि जो महिरबान रिंद पुरस्कार नमूने फौत थी वियो। वारसन जो सजावल रोड ते लाश रखी धरणो। वारसन जो चवणो हो त नौजवान खे ज़हर ॾेई क़तल कयो वियो, जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सिंध में गर्मीअ मथां वरी बिजली जी लोडशेडिंग अवाम लाइ अज़ाब बणाए छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा, हैदराबाद में मुस्लिम लीग फंक्शनल पारां बिजलीअ जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ प्रेस क्लब वारो अलामती भुख हड़ताल करे एहतजाज कयो वियो। मीरपुर मातिलो जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बि बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाज। सजावल जोड़े जो में बि एहतजाज कयो वियो। मांझंदि जे शहरनि पारां बि बिजली जी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ मंज़ूराबाद में एहतजाजी रैली कढी वई। उॾेरोलाल में बि बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज। शहरनि ऐं वापारनि बिजली जी हथरादो लोडशेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो। शहरनि जो चवणो त बिजली जी बंदिश सबबु पीअण जे पाणी जो बहरान आहे, कारोबार भी मुतासिर थी रहा है। सिंध में पानी की शदीद खोट बरकरार, आबादगार तबको सरापा एहतजाज बनल। टिकराटो के मुबारकपुर बंबली माइनर में पानी खोट खिलाफ आबादगार ने हारन पारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो। सन में मांझन तालके के छछर पंपिंग स्टेशन की बंदिश खिलाफ आबादगार हारन जो एहतजाज। एहतजाज कंदड़ अगवान जो चवण हो तो पानी की खोट सब पोखल फसल सड़ी रहा है, जानवर भी उंज वगे मरी रहा है, नोटिस वरतो वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिक ई वक़्त केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोट जे संगीन सूरतहाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाधो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीकि पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखिणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि इस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां। बहरहाल, साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसइलनि सबबि केतिरनि ई इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जे मयार बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात। सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फसल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूदु आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा सम्झा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरतहाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी। तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻिए वक़्तु कराचीअ जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनअती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौक़िया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसइलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदारु अदा करे सघे थी।

इहो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान। खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569 03003 8569।

0: लाइन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट एडजस्ट पानी मशीन थी क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी अणी रोड राबते जे लाइ 008-003
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट फिश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन
2: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-22-04-37-2-01-00

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिकु ई वक़्त केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोट जे संगीन सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठाई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणिती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाधो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीक पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखिणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि इस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां बहरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसइलनि सबबि केतिरनि ई इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जे मयार बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि। तालीम। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात। सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फसल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूदु आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा सम्झा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं बाबति ख़दशा, तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी। तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻिए वक़्तु कराचीअ जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौक़िया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसइलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदारु अदा करे सघे थी।